कना ये लक्के दवाने वाला वर्षे पे पमसा मजा खा अलग द टांग वाला पमसा मजा बातन का वही खा आओ कने गोरी यो बल खुगने के

leşki, leşki, leşki bu maza maza ha. Au kana, bu maza maza tavi geyim. Uy tavşa tavi gada mehpilde kuşal ode. Şlang, şlang, şlang, au şlang de da bangal ode. Şlang, şlang, şlang, au şlang de da bangal ode. सुमी दिल लरमा चिचा चाउस रेडियो ऑन करेवी अगीन लैश के प्रोग्राम के हरकेली स्टडी में श्री पखेराले उम्मीद रबदे चिटुल बरात शे बराबर विवाह साथ में मुश्ती रीगे और मुझ बिल्कुल खद है सासुर काल से सिला जानसर लग शेवे लग साथुन पस सासु गेंटी पर शामिल हो मा नुमाते गेंटी कवलेश कसु गेंटी कवल वाड़ी सिपर 335 435 15 प्रोग्राम दिस आकाश श्रमिक स्वागतस्थान

0: आशाशी नो मातबा नमस्कार सुमुकाबिल अभी पैसा कॉस्मेटिक्स के सांसरेला की कॉलर द प्रोग्राम ऑफ द अखलम जिसो को द चरतन जी अस्सलाम वालेकुम जी खुर के तास प्रोग्राम के हर के लिए स्टडी में श्री पखेराली वाइमा
1: शुक्रिया
0: शुक्र अलहमदुल्ला से बिल्कुल ठीक ठाक है उम्मीद दर बड़े चिता सुबह मुखे
1: شکر الحمدللہ
0: ویسا سواگائیں دلہ کرم اونین خوبا موسم خی کن استاسو زی کی با موریزی کن

ओके जी भाई जान, मैं फर्स्ट टाइम मैसेज कर रही हूँ आपको. मैंने परसों ऐसा क्रीम मंगवाया था, साथ में पेशवाश भी, लेकिन उसके डब्बे पिंक कलर का होता है और दुकानदार ने कहा था कि नया आया है. तो मैं आपसे पूछते हो कि ये सही है कि या नहीं है. अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरी बहन, अगर आपके हाँ में घर में व्हाट्सएप है तो उसका पिक्चर निकाल करके हमें हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भेजें. अगर आपके भाई के पास है या अपने आपके अब्बा के पास है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है. आप इस तरह कर लें कि उस पर देखें, आप उसकी बैक साइड पर देखें कि उस पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर को मुझे सेंड कर दे, ठीक है. और उसका स्पेलिंग मुझे बताए कि उस पर कौन सा स्पेलिंग लिखा हुआ है और किस तरह स्पेलिंग उस पर लिखा है, तो वो मुझे बताए, ठीक शो. पागी कम नंबर लिखे ले शोए दे पर प्रोडक्ट बानी पर बैक साइड तक खाम खा जमुन पहाड़ी और प्रोडक्ट बानी नंबर था. अगर नंबर था सूली कही माथे रोलेगी जी कम नंबर दे पे और स्पेलिंग ऐसे दे आई जेड दे संग स्पेलिंग दे सही था. अगर मा तू इंशाल्लाह जमुन प्रोडक्ट थी या तो बल कवने प्रोडक्ट थी.

ओके जी, जी मेरे वाले सॉन्ग लगाओ तो आपका मुझे सॉन्ग्स बताए और आपका कौन सा वाले सॉन्ग्स है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये सॉन्ग्स मुझे समझ नहीं आ रहे, तो फिलहाल आप लोग मान ही नहीं रहे थे, अब मैं क्या करूं।

अच्छा जी, इस दा और ये नंबर सिफर 3 3350 19 20। अच्छा जी, और ये मेरे ख्याल में आपने परमुला ब्यूटी क्रीम को मंगवाया है, उस पे कौन सा चीज बना हुआ है, मतलब उस पे एक चीज पे बना हुआ है फ्रूट का, तो भी मुझे बताएं। और अगर सच में इस तरह नेम लिखा हुआ है कि IZNA और नंबर यही है, तो बिल्कुल ये हमारी इज़्ना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान की ही प्रोडक्ट है।

ये राशिद कुमार वाले सॉन्ग्स मैं नहीं प्ले कर सकता, इसमें इस तरह अल्फाज है जो रेडियो में प्ले करने की काबिल नहीं है, सो आप समझे प्लीज, ठीक है जी, इसमें आपने नाराज नहीं होना है। वाओ क्या सॉन्ग्स लगाया है, वाओ सॉन्ग्स के अलावा भी मैसेज कर लिया करे, ठीक है जी, और अपना नाम भी बताया करे, ठीक है जी।

0: ओके जी, ये हमारी सना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान फार्मूला ब्यूटी क्रीम है और ये बिल्कुल जी आपने सही प्रोडक्ट लेके आए हो। और अगर फेस वॉश में भी यही नंबर लिखा हुआ है और उस पर भी जो है ना यही नंबर है और यही स्पेलिंग है, तो वो भी हमारा फेस वॉश है। लेट्स सी अदर कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी खोर
1: करेंगे
0: बिल्कुल जी शेम बराबर जुन मुखरवान दे ओके जी द इजना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम ले तासला हर कले सड़ी मो शिवायम
1: जनाती से डेर अजी तमाना
0: ना आमीन आमीन सरस्तासु
1: कुर्बान दे।
0: अच्छा जी दवानी सा खबर की हुई कद टांग
1: ना साड़ा ओण ना यम
0: द कम जी ना अच्छा जी दवानी ना नुदास तपोस को मामो को गाना सी दवानी ना खबर की हुई कद टांग ना खबर की हुई तासु गुस्सा शवले अच्छा जी वाणी ना वाणी वर्द दास भाई वाणी ना
1: जी
0: मुंगुर तवाना वायु गाना ना मुंग दवानी ने यू मुंगुर तपमीना वायु तासु दवानी ने तासु बते तंग ये जमुन को खोखा दवाना
1: नहीं
0: अच्छा जी तासे अच्छा जी आज जमुंगो उस्तासु वाले जुबान की फर्क देखा ना जमा वाले उस्तासु जुबान की लग देर फर्क देखा ना उस्तासु खबर की इंशाल्लाह उस रूर उस दकुमा का ना उस रूर उस दकुम डेरम इस दकड़िम
1: दा
0: हाँ हाँ हाँ हाँ उस माता पता देता उस गेंटी का वही चिकम दे अब्बल वर्त से वही नोस लग लग दकी गिरा था हाँ ना ना ना ना य खुदा पाक जमा खोर जमा पे खेल सर झगड़े लड़ा अच्छा जमुंग देश ना कॉस्मेटिक्स वाले प्रोग्राम सुमरे टाइम ना हो रहे
1: बस दा
0: अच्छा जी माशाल्लाह नुसंग जमुंग दे प्रोडक्ट इंतहा मुकड़े अगी आगाजान तरह उड़े ली दी अखपल जान द पारा
1: नमस्ते।
0: अच्छा जी माशाल्लाह कम कम प्रोडक्ट मो इस्तेमाल करी माशाल्लाह जी माशाल्लाह नुसंग खलको दम पैगाम वर कवा
1: कना
0: आया खुदा पाका अनु मदरसी स्कूल तजील तखपल सुहेली मलगरु था वाय चीज दखाम का इंतहाब दे इजना कॉस्मेटिक्स कई
1: ना जरूर रेकी
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह उस्ताद दी वकी आवाज ता सुखेंद मौरी अगी ता बस वेल ग्वाड़ी
1: बस आहा दसी आई मा छे छम खरपी अच्छा द सर खुशकी वी न द खर्च ते को इंशाल्लाह द तुसे किन प्रोडक्ट छे दा वकी दम रजर की वे चेंसी
0: इंशाल्लाह
1: फसल होई जने
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह जमा पखेल ता सुमुक द पपेल जल काल करे गयो जल मुमक की गड़ो
1: ना सड़ा दादी रजना मखम यूर गया था कड़ाई वो खुद ना बिया भी रश या खुदा या पाका नतासु नामसद नामरा तवाइले शेख पला ईमान अच्छा जी इस खबर इनिश्ता इंशाल्लाह उस पमा तयादी खा ये जरदा तजिन के तीन बोलीगा बस उस पमा तस्तासु आवाज उम यादी और स्तासु चिकम ने प्रोग्राम थरा तक ब मुस्मा तयादी ठीक शो
0: जी
1: ओके ओके
0: मतलब सर वाले विख्तान चिकम दगा दिखा
1: ना
0: अच्छा जी अच्छा जी देता हर बल शेम पूरा वाक ले सही था और जमुंगा तेल
1: अच्छा
0: आओ जी दहेज ना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान तेल वर तरा वाख ले आओ द हर्बल वाले शैम्पू बस बाज मामद से गुल मामद से लबोर शी इंशाल्लाह गी सर मिलावी की ठीक शो डेरा माने ना डेरे शुक्रिया
1: ओ हाँ दायु गाने फरमाइश में कदर तरा
0: ओके कोशिश पकुम ची पूरा कम दर
1: था अच्छा गाइस जाहिद कलीवाल वो
0: ठीक शो जी जगोर मकदा प्लेलिस्ट की मास रवा प्ले कुम दर था शाबा सही था
1: बस टाइम देना बस का मस्टेशल में मंजूर का सलामी नहीं
0: ओके जी वालेकुम अस्सलाम डेरे से आता मैंने शुक्रिया
1: ओके माने ना

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ एक तो हुरैन आपकी हंसी बहुत चुड़ैली वाली है और दूसरा यही कि सिर्फ मैं हुरैन हूँ। इट्स मी हुरैन और भी कुछ लिखा करे, ठीक है जी। असलाम भाई भी तो लैला खान को माता रत रिश्तो सॉन्ग रत प्ले का रेहान वजीर इस दागोला अम्मा बिल्कुल जिताश लखो प्ले खड़े जी जी वरीशा वफायम वाओ थैंक्स सॉन्ग प्ले कर लिया आपको रिट सल्यूट आपसे कुर्बान थैंक यू सो मच वरीशा वफायम अलजनत नहीं ऐसा कोई बात नहीं मैं किसी से ना तंग होता हूँ मुझे खुशी होती है जब मेरे लिसनर्स मेरे सुनने वाले मुझे मैसेज करते हैं मुझे कॉल करते हैं लेकिन जिस बंदे को बात समझ आ जाती है उसको आ जाती है लेकिन जिसको समझ नहीं आती उसको अगर आप हजार बार भी कहे वो वही और अपनी ही बात करेंगे सो मुझे कोई मसला नहीं है मुझे कोई इशू नहीं है सो आप एक दफा लाजिमी आप सोचें कि मैंने क्या लिखा है और मैंने क्या बोला है आपसे जब आपको समझ ही नहीं आ रही तो अब मैं इसमें मेरी गलती नहीं है आप बात को समझे जब आप बात को समझोगे तो फिर आपको यही लगेगा कि मैंने ठीक बोला है ठीक है मेरी प्यारी बहन।

200 रुपए कीमत दे। हाँ सुहेल कॉस्मेटिक स्टोर दे आडा अफजल खान मार्केट की दुकान दे दुआ सलाम कवीर लिंग रोड के जिकम सुमर हम दुकान दीप सवाबाई की सर मिलाई हुई यहाँ चाहते कपूर मार्केट का मकाम कॉस्मेटिक स्टोर दे सरदा इसमें तमाम प्रोडक्ट मिलाई हुई हाजी बेग डी चौक की जानजी मामा सरा दे इसमें तमाम प्रोडक्ट मिलाई हुई आगे वही दुआगान सलमन में खेबल आयशा एंड किरण दुआगान सलमन में खेबल सुंदर खटक दुआगान सलामों ने कभी कमरान बैठानी दुआगा ने सलामों ने कभी और नाज मोहम्मद वही दुआगा ने सलामों ने कभी कमरान वही दुआगा ने सलामों ने कभी खटक।

मैं हूँ आसमान नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और

0: ओके जी, 0927-291-292 नंबर से सजके बार बार में खन छ छ छ छांग वाले सो और दुन खे दे अब ते पता ने जी मेरे कल खरक बोलते खो फिर और दुन को ते पता ना और पे छा बजे छ माने जी रेडियो अमन खरे को सोस ट्यून खड़े वेजे अब ते सदा भी आया छ जगह प्रोग्राम छ प्रोग्राम नुम दाए दखुला राज हां तो सब इश्क से बात का आसमेट पाकिस्तान दे तरफ ना ठीक देता का सरा करवा के 11 ना 12 बजे पूरे और जी बिल्कुल देखा टूटे बूटे आवाज तो मिले किस से राज के हमदर्द से फर्स्ट कलर गुरु छिम से कल लारी सोखता अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी अलावा करम से घड़े छे मिस्टर सोखता किम से ना
1: जेनी
0: हेलेना जफरान जफरान भाई जानते में सिफात का आसमिन प्रोग्राम के जेड वेलकम हर कले स्टडी मशी जफरान सरंगे दा जफरान मोते तो खबर इन फर्स्ट टाइम के जी दासे मोते लागे सरंगे जफरान से आवाज दे रिस्क न कट के जी लगा जी सिग्नल मसला वी अच्छा लश की मसला था अच्छा दारू तो वैसे रेडियो आवाज को साम देती का ना अच्छा मो प्रोग्राम है पहले जालो रे दाल अच्छा डेरी ओर वे मोते सब ले किस जी अच्छा राहत भाई वाह माशाल्लाह माशाल्लाह भी आता जोर ले सुनर ये मोई छिका छिर है बिल्कुल नवा जफरान रोग है सा जी जी आमीन आमीन बिल्कुल अमल चिदागा डेर जरूरी दा अमाल काम दा बस कहना हर इंसान खफला फायदा दा जफरान भाई का चुक पे अमल कभी खो फायदा भी तरासी का चुक पे अमल न कही खो फस जोन दाई नुकसान रासी खो मिजा दगा यो खफला जिम्मेदारी गणू छे दो खफलो बिल्कुल दगा रुनु ख्यान दो दगा अखशे शे खबर यूज अली ब्यावर वरस हो विता यूदु कु विता माखे ता एक शेज दो जी जी जी बिल्कुल जी जफरान भाई नूरा प्रोग्राम के सर शामिल अभी चाहता है दुआ सलाम जी जी सबेर वजीर था लश्की आवाज पर सेवा का ऐलान पर सेवा का चिता इच्छी तरह वर्क था का आवाज दूर भी कहना चाहिए रूस शीतल लश्की खबर ऐलान पर सेवा का अच्छा घर शाह जैसे काल मार के पे रेडियो ऐलान पर सेवा शाह सही रहे जगह चैनल में आवाज देर लरी सी कना उरे ठांक रेडियो में देखा सी कना लरे पुरी सी शाह ऐलान पसी कभी ओके जी जफरान भाई हर कलाई दे तभी आज सिफात कास्मेंट इसके जी दे काल का वाला यो जहान मन्ना थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर ओ जनाब जफरान दे जनी खेले ना थैंक यू सो वेरी मच बशा और इदुन को यो जरूरी ला नोरो साबिर वसीर से दाई का नाय मोना भी ही वर्क शवाईदा कसुग में आवाज वो रुई लश्के रो खबार के साथ जे राज भाई पता कसरा गरमा के खरुद जी रो गला दादा था पाता है नस्ता सा हाय बारान दाओ की अल्लाह पाक का बारान खोड़ी जरूरत है गन्ना गुलफान

0: ओके जी, सिफर 9272921292 दिलारी गुरु नेक्स्ट कलर छी। अस्सलाम वालेकुम। ओए होए तो से काल काट छ जी यार, उधर ट्राई का वाला है। सिफर 9272921292 दिलारी जी और अकीब खटक भाई का ना या वंस अगेन राज भाई, क्यों नहीं क्यों नहीं, वैसे टांग वाले भी भाई है, उनको मैं दिल की गहराइयों से प्रोग्राम आने पर वेलकम कहता हूँ। और राज भाई ओके जी, रकीब दा खबर असल के तो तपा दा ना वैसा ओके रकीब यो जहान मनना ओके जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, काल मो मिलाओ दा शुक्र सा खबर की किम जोइना अबूज मुकटकीस जी नरुसी लश की खबर जोई चेंज गए सिग्नलो मसाले दी जी। हेलो हाँ जी हाँ जी, लश्की खबर जोई चेंज गए शायद जावूज मुरूशी
1: ज्यादा जनाबी।

अच्छा, तो जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि आप को जो जहनी ये जो तकलीफ का सामना है या जिस तरह के हालात हैं, इसमें जो एक सुख की घड़ी है, एक राहत की घड़ी है, वो मिलती है आपको अपने घर से। अगर आप अपने घर में सुकून से जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो बहुत सारे आपके मसले हल हो जाते हैं। अब इन्हीं खानदानी मसाइल पे, यानी जो हमारे फैमिली केसेस होते हैं, मियां बीवी के दरमियान जो इख्तलाफ आ जाते हैं और अक्सर खवातीन फिर अदालत से रुजू करती हैं मुख्तलिफ, चूंकि उनके पास खवातीन के पास रास्ते होते हैं, वो तलाक भी अदालत से ले सकती हैं, वो खुला ले सकती हैं। अब इस सारी बात को समझने से पहले दो चीजों को समझना जरूरी है, एक होता है तनसीख, एक होती है खुला कानूनी तौर पे। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट फैसला दिया और उस फैसले के तनाजुर में हम बातों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक है तनसीख, एक है खुला। अब तनसीख क्या है, खुला क्या है, लीगली जो हम समझते हैं, तो तनसीख निकाह ये होता है कि जब कोई खातून अदालत से रुजू करे, अदालत के अंदर केस दायर करे और उसमें कुछ वजूहात बयान करे उस शादी को खत्म करने की, जैसा कि वजह है कि जी उसका शोहर पिछले 4 साल से लापता है, 4 साल से उसका शोहर, कानून के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं जो पाकिस्तानी कानून है, 4 साल से उसका शोहर लापता है, उसका कोई अता पता नहीं, वो कहां है, किधर है, कहां गया हुआ है, किसी के साथ कोई राबता नहीं हुआ। तो 4 साल बाद कानून कहता है कि उस औरत को ये इख्तियार है कि वो अदालत से आके तनसीख ले ले, उस शादी को खत्म करके वो दूसरी शादी कर ले, या उसके शोहर को कम अज कम 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है, कम अज कम 7 साल कैद की सजा हो गई। अगर किसी खातून के शोहर को कम अज कम 7 साल कानून के मुताबिक कैद की सजा सुना दी जाती है तो ऐसी खातून को हक हासिल होता है कि वो खुला का दावा, यानी तनसीख का दावा अदालत से ले सकती है और उस शादी को खत्म कर सकती है।

इसमें जो पहला बुनियादी नुक्ता सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया वो मैं पहले बयान कर चुका हूं कि जबरदस्ती के खिलाफ नहीं चलेगी। अगर फैमिली कोर्ट्स खवातीन के दावा तनसीखे निकाह डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को खुद ही खुला में तब्दील बदल देती थी, जिसका नुकसान ये होता था कि औरत को अपना हक मेहर और जेवर वापस करना पड़ता था, जो मैं आपको बयान कर चुका हूं। अदालत औरत की मर्जी रजामंदी के बगैर किसी केस को खुला में तब्दील नहीं कर सकती। अगर शोहर ने जुल्म किया है या दूसरी शादी कानून के खिलाफ की है तो निकाह खत्म होगा, खुला नहीं, और औरत अपना पूरा मेहर प्लाट सोना रखने की हकदार होगी। ये बड़ा अहम नुक्ता सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बयान किया, जिसमें मैं तफसीलन आपको समझा चुका हूँ पहले नुक्ते पे। दूसरा नुक्ता, नाफरमान बीवी जैसे अल्फाज पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी। अब ये नहीं है कि एक बीवी है नाफरमान और आप उसके लिए नाफरमान वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं, लेकिन बगैर किसी सबूत के, बगैर साबित किए सिर्फ नाफरमान बीवी कह देना ये काफी नहीं है। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारे माशरे और अदालतों में खवातीन के लिए नाफरमान डिस ओबीडियंट या खुद साख्ता मफरूर सेल्फ डिजर्टिंग लेडी, सेल्फ डिजर्टिंग लेडी वो ऐसी खातून, खुद साख्ता मफरूर ऐसी खातून जिसको सिर्फ अपना आप नजर आता है, उसको ना अपना शोहर नजर आता है ना अपने बच्चे नजर आते हैं, वो सिर्फ अपने आप पे तवज्जो देती है, उसको बाकी अपने खानदान उससे कोई भी गर्ज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे खवातीन के लिए। अदालत के इस पे रिमार्क्स यह है कि जी जबान सोच की अकासी करती है, अदालतों को ऐसे अलकाबात से गरेज करना चाहिए जो खवातीन की तजलील करें और उन्हें एक मखसूस इखलाकी पैमाने पर रखें, औरत की इज्जत नफ्स और खुद मुख्तियारी मुकदम है। लेकिन यहां पे एक और बात भी हम डिस्कस करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के बारे में बड़ी अच्छी बात की कि आप खवातीन के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें कि वो यानी नाफरमान है, वो बदकिरदार है, वो गलत है, वो गंदी है, झगड़ालू, गलत अल्फाज आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने दावाजात में इस्तेमाल ना करें। लेकिन अब इससे हम ये आंसर भी ले सकते हैं कि जिस तरह खवातीन आती हैं अदालतों में और वो भी बहुत बार दफा अपने शोहरों के बारे में गलत अलकाबात का इस्तेमाल करती हैं, शराबी है, जानी है, जानवर है, घटिया है, बेगैरत है, गधा है, मैंने ये सारे अल्फाज पढ़े हुए हैं दावों में, ना मर्द है, मतलब ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो मैं यहां पे बयान नहीं कर सकता। ये तो नॉर्मल अल्फाज हैं जो मैंने आपको, मैंने लिखा कि मेरा शोहर गधा है, मैंने पढ़ा एक दावे में लिखा हुआ था कि मेरा शोहर गधा है, गधा, ये किसने लिखा था मेरा शोहर वैशी जानवर है, तशद्दुद करता है, ठीक है, मारता है, पीटता है, शराबी है, जानी है, जुआरी है, एक ने लिखा हुआ था मेरा शोहर बच्चाबाज है। तो ये इस तरह के अलकाबात अगर लड़की के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, तो अगर आप, एक तो है कि अगर एक खातून ऐसा ऐसी है तो फिर तो आप इस्तेमाल करते हक बजाने में आप साबित कर सकते हैं, अगर आपका मर्द ऐसा है तो फिर तो आप अगर इस्तेमाल करते हैं साबित कर सकते हैं तो हक बजाने में, लेकिन सिर्फ अपना केस को मजबूत करने के लिए और शोहर से जो है ना वो चीजें तलाक लेके निकलवाने के लिए इस तरह के अल्फाज शोहर के लिए इस्तेमाल करना, ये भी इंतहाई नामुनासिब है।

0: कलाई में मशमा तोर जाने वार वार आशा सर दो सर दो आखरी दिदन लगन
1: नूर लश नूर हुए है क्या नालश इडियर हुए या
0: अच्छा पाव जो मैं गाना सुनाता हूँ उस समय यार खलार सुनो तो खैर
1: है हाँ जी जी जी ठीक है से
0: यार खलार जल चासो जल दिया उस पाजले गम पाता चावे चेन्यम शा पाता चावे चेन्यम शा यार खलार बल चासो जल दिया उस पाजले गम पाता चावे चेन्यम शा यादे दिल फाल के तोर तोर अश्पादा हलक लेवाना दा
1: सही जामिर समाज से द ग्रेट एरा मने ना नोटेंशन हर्बल शैम्पू यूज हर्बल सूर्य यूज कभी बस करना
0: हाँ इस्तेमाल करो मारो जेदा
1: हाँ
0: दा ना इस्तेमाल करो दा मख बिंदी दा ये कोई
1: हाँ सच में दिमाग बिंदी हाँ
0: दास दाने मानी ना पीत में तो
1: पीत में ज़दर तशवास सही था क्या ना ज़दर तशवास जिसे दे इसे माल की सही ना
0: हाँ
1: डीरा मने ना सी डीरा मने ना मिर्ज़ुमान शुक्रिया सिर्फ़ ख़ुशालश देर ख़ा

ओके जी मर्डर चालान का माता राखी इजाजत दलुलफमान बाय बाय चाचा एंड लव यू ऑल थैंक यू फॉर मोस्ट लिसनर दलुलफमान और बखेर मुफ खैर.

डियर समीन और डियर नाजरीन, अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो कॉल का हमारे कांटेक्ट नंबर है, लेकिन फिलहाल नहीं। अभी तो हम अब अपने बात का आगाज करेंगे, अपनी बात करेंगे, अपने मौजू को आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद फिर आपके साथ वही बात होगी जिस तरह हमेशा हमारे साथ होती है। 09635114588 पे आप हमें मैसेज कॉल कर सकते हैं। 09635114888 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और साथ साथ हमें अगर मैसेज करना चाहें तो क्रिएट मैसेज में जाके RAT कैपिटल लिखे, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, और स्पेस देने के बाद अपना नाम और मैसेज टाइप कीजिए, 8583 पे सेंड कीजिए। इंशाल्लाह हम आपकी बात को, आपके मैसेज को और आपके प्यार मोहब्बत को हम प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे जी।

डियर सामीन और डियर नाजरीन, आज हमारे टॉपिक जो है उनवान जो है यकीन का दरिया। आज जो उनवान है हमारा यकीन का दरिया। दुनिया जिस चीज का आपको यकीन होता है उसी काम को आप शौक से करते हैं, लगन से करते हैं, प्यार से करते हैं और दिल जमी के साथ करते हैं। और जब आपको किसी चीज का यकीन, जैसे एक मजदूर है ना, तो सुबह जब मजदूरी पे जाता है तो किस यकीन के साथ काम करता है, इस यकीन और उम्मीद के साथ कि जब असर होगी तो फिर असर के वक्त मुझे 1000 रुपए 900 1200 मिलेंगे। मिस्त्री या इस तरह जितने भी शोबहाए जिंदगी हैं उसमें जब कोई सुबह काम पे जाता है तो असर के वक्त उसको वो मजदूरी दे दी जाती है। तो इस यकीन के साथ कि मुझे असर में कुछ मिलेगा जिससे मेरी जरूरतें पूरी होंगी, तो न वो गर्मी देखता है, न गर्मी काम करने से रोकती है, न सर्दी उसको काम करने से रोकती है, न कोई मजबूरी, न कोई महरूमी, न कोई मतलब कमजोरी, क्योंकि उसे पता है कि जब असर का वक्त आएगा तो मुझे कुछ रकम मिलेगी जिससे मेरी जिंदगी की जो जरूरतें हैं महदूद वसाइल में रहते हुए वो मेरी पूरी होंगी। तो इसे न गर्मी रोक सकती है, न गर्मी, न मजबूरी, न रिश्तेदारी, क्योंकि इसे पता है कि मेरी इसके बगैर मेरा चारा कार नहीं है। तो इस तरह यकीन की बहुत बड़ी ताकत है और यकीन ही इंसान का यकीन ही की बुनियाद पे ये दुनिया के अंदर इतने कारनामे, देखो जमीन पे बैठ के इंसान जहाजों को उड़ाता है। आजकल तो ऐसी गाड़ियां आ गई हैं जो ड्राइवर लेस हैं, गाड़ी ड्राइवर के बगैर चलाई जाती है। अब मैंने एक जगह देखा कि एक ड्राइवर नहीं था लेकिन वो फुटपाथ से नीचे से वो मतलब कागज या कोई ऐसा छिलका या ऐसी कोई बात थी, कागज छिलका तो उसको जमीन से उठा लेता, कोई छोटा सा पत्थर कंकर तो जमीन से उठा लेता था और फुटपाथों पे जा रहा था। और जहां पे रेड इस तरह होते हैं ना इशारे होते हैं बड़े शहरों में, तो वहां पे रेड लाइट जब ऑन हो जाती तो वो रुक जाती थी वो गाड़ी, और जब ग्रीन चल जाती तो ये चलने लगे। तो मतलब ऐसी कोई मशीनरी थी कि जब ट्रैफिक रुकती तो ये रुक जाती गाड़ी, और जब ट्रैफिक का कहा जाता कि आप जाएं तो दूसरी तरफ ट्रैफिक रुक जाती और ये गाड़ी बगैर ड्राइवर की थी फिर भी चली जाती। तो आजकल ऐसे हैं कि ऐसी गाड़ी भी मैंने देखी कि हाथ हिलाया और गाड़ी खुद ब खुद पार्किंग से निकलकर इसके मालिक के सामने ठहर गई, मालिक निकला, इशारा किया, गाड़ी खुद ब खुद पार्क हो गई, गाड़ियों के बीच बैठ गई, ठहर गई। तो बात यह है कि यकीन ही की बुनियाद पर इंसान इतनी तरक्की कर रहा है और यकीन ही की बुनियाद में इतनी इजादात और दरियाफ्तें हो रही हैं। तो मसला यह है कि यकीन की, जब आपको यकीन होगा, इस बात पर पुख्ता यकीन होगा तो आपके लिए आसानियां भी पैदा होंगी और आप मेहनत और कोशिश भी करेंगे। तो इस हवाले से यकीन का दरिया, एक सादा दिल, एक चरवाहा, वैसे भी चरवाहे सादा दिल होते हैं, बड़े मुखलिस लोग होते हैं, मेहनती होते हैं, उनके अंदर सादगी कूट कूट के, आजजी कूट कूट के भरी होती है। तो बात यह है कि एक चरवाहा था तो बहुत गरीब था, उसका एक छोटा सा रेवड़ था। तो जब वो उस इलाके में काहत पड़ गया, बड़ी मजबूरी थी, घास का एक तिनका नहीं उगता था, तो लोग बड़े परेशान थे, लोगों के जानवर मर रहे थे, लोग खुद परेशान थे कि वह मुश्किल चारा जानवरों को मिल रहा है, और कुछ लोग तो सिर्फ जानवर पाल कर ही जिंदगी और जिंदगी का और घर का सरकट चलाते हैं, तो बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा कि आखिर ये क्या होगा। तो एक दिन एक खतीब साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह के नाम के अंदर बड़ी बरकत है, बड़ा कमाल है, बड़ा जादू है, बड़ा आप पहाड़ों को हिला सकते हैं, समंदर आपको रास्ता दे सकते हैं, और इतने फजाइल बता रहे थे कि आप हैरान रह गए। तो खतीब, एक बात यह है कि उस चरवाहे ने जो बहुत तकलीफ में था और उसे जानवर उसके बड़े कमजोर हो गए थे क्योंकि उस इलाके में काहत पड़ गया था, बारिश हो नहीं रही थी, घास उग नहीं रही थी, तो इस लिहाज से वो बड़ा परेशान था अपने अपने रेवड़ के लिए, बकरियों के लिए, भेड़ बकरियों के लिए। एक रिवायत यह है, दूसरी रिवायत यह है कि इसका जब ये परेशानी हुई कि अब काहत है, मेरे जानवर मर जाएंगे भूख से, तो एक खतीब साहब के पास गए और जब वो मस्जिद से आए, बड़ी धुआंधार तकरीर की, तो उससे कहा कि हजरत साहब अब तो बड़े अहले इलम हैं और बड़े समझदार हैं, अल्लाह के साथ आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, हम तो दुनियादार लोग हैं, हमें तो दीन की इतनी समझ नहीं है, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा सलीका, कोई ऐसा वजीफा बता दें क्योंकि मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने भी ये बात लिखी है
مختلف مطلب مقصود یہ ہے کہ یقین, باقی یہ مختلف ہو سکتی ہے مختلف کتابوں میں, اے بھی ہو سکتا ہے. پھر اس نے یہ کہا, ایک بات یہ تھی کہ اس نے خطیب صاحب سے کہا کہ میرا نقصان کا نقصان کیسے ہو رہا ہے, کہ مجھے اس ہمارے جو گاؤں ہے اس میں تو کہت ہے, تو بیچ میں ایک چھوٹی سی نہر ہے یا دریا ہے, میں اس پار جب جاتا ہوں نا تو وہ علاقہ بڑا زرخیز ہے, اور زرخیز علاقہ ہے تو وہاں میں دو آنے بکریاں مطلب جو کشتی میں بٹھا کے دو آنے دیتا ہوں کشتی والے کو, اور جانے کے اور دو آنے واپس کے, عصر کے وقت جب آتا ہوں تو دو آنے دیتا ہوں, تو میں یہ نہر یہ دریا پار کرتا ہوں, تو اس طرح میرے چار آنے, پرانے زمانے کی بات ہے, چار آنے میرے جو ہیں وہ خرچ ہو جاتے ہیں, میں کسی طریقے سے چار آنے بچانا چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے بچ جائیں اور میں تھوڑا سا اسودہ حال ہو جاؤں, خوشحال ہو جاؤں, تھوڑی سی میری بچت ہو جائے, کیونکہ میرے لیے بڑی مشکل ہے. تو اب خطیب صاحب حیران ہے کہ ایسی کون سی دعا بتاؤں تمہیں, دریا ہے بیچ میں, اب کشتی واحد ذریعہ ہے, کشتی کے بغیر تو انسان پانی پہ نہیں چل سکتا, یقین کی بات ہوتی ہے نا. تو اس نے کہا اس سے میں کیا کہوں, کہ بھائی کیا ایسا کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ وظیفہ کہ میں تجھے بتاؤں اور تم. تو اس نے کہا یہ سادہ دل آدمی ہے, مخلص آدمی ہے اور عاجز آدمی, اس کو کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور دریا میں یا نہر ہے اس میں ریوڑ کو ڈال دیں بکریوں کو, انشاءاللہ آپ پا, کیونکہ اللہ کے نام کے اندر بڑی طاقت ہے, جب آپ اللہ کا نام لیں گے تو دریا راستہ دیں گے, پہاڑ راستہ دیں گے, جانور راستہ دیں گے, درندے راستہ دیں گے, پرندے آپ کی مدد کرنے کے لیے اتر سکتے ہیں, دریا خشک ہو سکتے ہیں, سمندر خشک ہو سکتے ہیں, اللہ کے نام کے اندر کیا نہیں ہے, ہر ایک چیز ہو سکتی ہے. لیکن بات مین بات کون سی ہے ڈیئر سامعین اور ڈیئر سامعین ناظرین, یقین کی بات ہے. تو اس نے کہا چلو ویسے ٹالنے کے لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور دریا میں کود جائیں, انشاءاللہ آپ کو راستہ دے گا دریا. تو سادہ آدمی تھا وہ, تو اتنی چلاکیاں ملاکیاں اس کو آتی نہیں تھیں, جیسے صبح ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریا پہ پھونکا اور ڈال دی اپنا ریوڑ ڈال دیا, وہ تو ایسا ہوا کہ وہ تو دریا کے پار چلا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر گیا پھر دوبارہ, مطلب اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کود جاتا دریا میں, دریا خشک ہو جاتا, یہ نکل جاتا, اور پھر اس کے بعد اثر کے وقت جب واپس آتا تو پھر دریا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ریوڑ کو ڈال دیتا, پھر نکل آتا. بہرحال اللہ پاک نے ایک اسباب سبب بنانا تھا کہ جب اللہ کے نام پہ پختہ یقین ہوگا, اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہوگا, اور اللہ کے بغیر کسی پر ایمان اور اعتقاد آپ کا نہیں ہوگا, تو اللہ پاک بہترین مدد کرتے ہیں, جیسے کہ ہم سے پہلے لوگوں کی مدد کی گئی. تو ایسا ہوا ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, ایک دو مہینے وہ بکریوں کو لے جاتا, اب اس کی بکریاں اور بھیڑیں, اس کا ریوڑ بڑھ رہا ہے اور طاقتور ہو رہا ہے, اور اس کی بکریاں موٹی اور فربہ ہو رہی ہیں, لوگ حیران ہیں کہ ہماری کمزور ہو رہی ہیں, ان پر جلد سکن خشک ہو گئے, اور اس کے جو اس کے آدمی کے ریوڑ بڑھ رہے ہیں اور اتنی طاقت مطلب موٹی ہو گئی ہیں, فربہ ہو گئی ہیں, تو وہ حیران و پریشان. بہرحال کیا کرتے, اللہ کا اپنا ایک نظام تھا. تو ایک دن واپسی پر آ رہے تھے, کیونکہ نہیں سے خوف تھا نہ اندیشہ تھا, صرف ایک کلمہ کہیں اور دل میں یقین کا سمندر تھا بس. تو ایک دن شام کو لیٹ ہو گیا, تو واپس آ رہے تھے تو خطیب صاحب بھی کھڑے تھے, تو خطیب صاحب چرواہے نے کہا کہ حضرت صاحب اب کیوں کھڑے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور دریا کشتی کا انتظار, کشتی کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, دو مہینوں سے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا پڑھتا ہوں اور دریا میں کود جاتا ہوں, میری بکریاں بھی نکل جاتی ہیں پار ہو جاتی ہیں اور میں بھی پار ہو جاتا ہوں, دو مہینوں سے کرو, دیکھو میری ریوڑ کا کیا حال, میری جو بکریاں ہیں بھیڑے ہیں تو بڑی طاقتور ہو گئی ہیں, فربہ ہو گئی ہیں. اب خطیب صاحب بھی حیران, کہا آپ کشتی کا کیوں انتظار کر رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور جائیں. تو خطیب صاحب تو ڈر گئے, کہا یہ عجیب بات ہے, اس کو تو میں نے بات کی تھی لیکن اس کا یقین تو بڑا کمال کا ہے کہ دو مہینوں سے جا رہا ہے اور آ رہا ہے. بہرحال خطیب صاحب نے اور کچھ کہا نہیں, لیکن اس نے جھجکتے ہوئے اور ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت پڑھی, اور پانی میں جب اتر گئے تو وہ آہستہ آہستہ جیسے پانی اس کے گھٹنوں تک آیا, کنارے پہ تھا نا, پھر ناف تک آیا, پھر سینے, اور اس نے کہا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ, تو گر رہا ہوں میں, تو بہ جاؤں گا میں, تو ڈوب جاؤں گا. تو اس نے کہا کیسے مولوی صاحب, وہ چرواہا گیا اور اس کو نکالا, کیسی بات ہے اب کیوں ڈوب جائیں گے. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو یقین آپ کے پاس ہے, آپ نے ہی تو بتایا تھا مجھے کہ بسم اللہ, میں تو پڑھتا ہوں بسم اللہ, وہی آیا تو آپ بھی پڑھیے, تو آپ تو مجھ سے زیادہ با علم ہیں, با عمل ہیں, با شرح ہیں, تو کیوں نہیں آپ. اس نے کہا آپ کے پاس
यकीन है और मेरे पास यकीन नहीं है, मैं साहिब गुफ्तार हूँ और आप साहिब यकीन हैं, साहिब अमल हैं। अब इसमें ये नहीं है डियर सामीन, इलम कहते हैं ना, इलम के समंदर से अमल का एक कतरा बेहतर है, इलम के समंदर से अमल का एक कतरा बेहतर है और अमल के समंदर से इखलास का एक कतरा बेहतर है। तो ये तो होगा ना, और जैसे कि इलम के समंदर से जहालत के समंदर से इलम का एक कतरा बेहतर है और इलम के समंदर से हाँ जी अमल का एक कतरा बेहतर हो, अमल के समंदर से इखलास का एक कतरा बेहतर, इखलास यकीन को कहते हैं जी। तो उसने कहा मैं तो डूब रहा हूं, उसने कहा तेरे पास यकीन है और मेरे पास यकीन ही, आप साहिब यकीन है और मैं साहिब गुफ्तार हूं, इलम बगैर यकीन के वजन नहीं रखता। इस शिकायत से नचरवाही की बड़ाई मकसूद है डियर सामीन ऑडियन, अब सुने मेरी बात, कि इस वाक्य से कभी ये मेरा मकसूद नहीं है कि वो अहले इलम जो है वो कमजोर है, नकारा है, बेअमल है, ना वो बातूनी है, कभी इससे मकसूद ये कभी नहीं है कि मैं किसी की छुटाई कर रहा हूं और किसी की बड़ाई कर रहा हूं, तवज्जो से सुने, क्योंकि इस शिकायत से न चरवाहे की बड़ाई और न खतीब की छुटाई मकसूद थी, बल्कि इस हकीकत को वाजे करना था कि यकीन मोहकम जब यकीन आपका मुकम्मल होगा, अल्लामा इकबाल कहते हैं यकीन मोहकम जब आपका कामिल मुकम्मल यकीन होगा, अमल पहम और मुसलसल आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और मोहब्बत फातेल और मोहब्बत से पेश आएंगे। तो आगे कहता है कि जिहाद जिंदगानी में हैं यही मर्दों की शमशीरें, कि ये यकीन मोहकम अमल पहम ठीक है और मोहब्बत फाते इलम, ये जिंदगी के तीन उसूल हैं। आप कुछ भी हासिल करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, कुछ भी बनाना चाहें, कुछ भी ईजाद और दरियाफ्त करना चाहें, ये तीन उसूल हैं जिसकी बुनियाद पे आप कामयाब हो सकते हैं। डियर सामईन और डियर नाजरीन, बात क्या थी, बात थी यकीन की। एक अदना सा एक चरवाहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया पार भी हो जाता है, दरिया से वापस भी आ जाता है और उसकी बकरियां और रेवड़ बढ़ रही हैं, ताकतवर हो रही हैं उसकी बकरियां और फरबा और मोटी हो रही हैं। बात क्या थी, यकीन की। सिर्फ एक आयत पर अमल करने से उसकी जिंदगी बदल गई, उसका रेवड़ बढ़ गया और उसकी मतलब जानवर जो थे वो ताकतवर और फरबा होने लगे। हाँ, और सारी दुनिया हैरान थी कि ये कैसा कमाल, कैसा जादू है। कोई जादू नहीं, कोई कमाल नहीं, सिर्फ एक आयत पढ़ के, और आयत पढ़ने के बाद उस पर कामिल यकीन था। कुरान के एक एक हर्फ के अंदर दुनिया और आखरत की कामयाबी का यकीन है, और फिर पूरी आयत तो उसके क्या कहने। तो इस आयत पर यकीन करने से उसकी जिंदगी मतलब आखिरत भी बनेगी, दुनिया भी बनेगी, क्योंकि कुरान पर कामिल यकीन करना हमारे ईमान का हिस्सा है। किसी एक हर्फ से भी आप इनकार नहीं कर सकते ना। तो मौलाना रूमी भी कहते हैं, जिसका एक शेर है कि तर्जमा कर देता हूं, फारसी का शेर है कि अगर तेरे साथ खुदा हो तो कश्ती न भी हो तो दरिया तुझे अपने कंधों पर उठा के रास्ता दे देगा, जिस तरह इस चरवाहे को दिया। आगे ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं, जेड़ा रब ते रखे भरोसा, जेड़ा रब ते रखे भरोसा, ऊनू लोड़ न कोई वसीला। अल्लाह से ना कश्ती जरूरत है, न उसे किसी सहारे की जरूरत है, सिर्फ अल्लाह ही सहारा है और अल्लाह ही वसीला है। अल्लाह तबारक उधर डायरेक्ट मदद फरमाते हैं ना। तो असल बात यह है कि सिर्फ जानना काफी नहीं, सुनिए डियर समीन, सिर्फ जानना काफी नहीं, मानना भी जरूरी है। सिर्फ सुनना जरूरी नहीं, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं, पर उस पर अमल भी जरूरी है। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं, उस पर यकीन करना भी जरूरी है। सिर्फ मानना नहीं, सिर्फ इलम नहीं, बल्कि उस पर यकीन भी चाहिए। चरवाहे के पास किताबी इलम नहीं था, न वो किसी स्कूल में पढ़ा था, न किसी मदरसे में पढ़ा था, मगर इसका दिल रब से ऐसा जुड़ा हुआ था और ऐसा मजबूत और ऐसा रब था उसके साथ कि जो सुनी उस पर अमल किया। हाँ, इसलिए दरिया इसके लिए नरम पड़ गया और ये रोजाना पार हो जाता। और खतीब साहब के पास इलम था, मगर दिल में इलम और अमल की पुख्तगी न होने की वजह से उसके कदम डगमगा गए। मतलब मकसूद यह है कि मैंने ये नहीं कहा कि मतलब छोटाई या बड़ाई बयान कर रहा हूं, मकसूद किसी जिसको भी यकीन होगा, जिसको भी अल्लाह की जात पे, कुरान पे, आयात पे, अल्लाह के खूबसूरत नामों पे और दीन पे, अहदीस पे यकीन होगा, अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुनिया भी बनाएगा और आखरत भी बनाएगा। अल्लाह पाक हमारे इखलास को देखते हैं, न हमारे चेहरों को देखते हैं, न हमारे बड़े बड़े बंगलों को देखते हैं, सदकों को देखते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि इखलास ये आदमी कर किस लिए कर रहा है। तो डियर सामईन और डियर नाज़रीन, यकीन वो कश्ती है, यकीन वो कश्ती है जो बगैर बादबान के भी इंसान को मंजिल तक पहुंचा देती है। जैसे इसके पास कश्ती नहीं थी, उसके पैसे भी बच गए
और लोगों के लिए कितनी राहें अम्वाल, जब ये ऐलान हुआ कि मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब खतीब साहब ने आगे कितने लोगों के सामने ये बात बयान की होगी कि ऐसा साहिब यकीन शख्स जिसको एक बार मैंने कहा बिस्मिल्लाह रहमान और कई महीनों तक वो बिस्मिल्लाह और सारी जिंदगी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर वो दरिया पार हो जाता और वापस भी आता था, लौटता भी था। तो ढेर सामीन, और इस तरीके से जब चरवाहे ने और चरवाहों को और आवाम को और वहां के इलाके लोगों को बताया होगा तो उधर कितना मतलब ईमानी कैफियात और उनका जो ईमान का लेवल है वो कितना बड़ा होगा, उनके अंदर कितना वो अल्लाह की जात और कुरान पे और अल्लाह की कुरान पाक की आयात पर कितना यकीन आया होगा कि जब इंसान अल्लाह की मानकर चलता है और अल्लाह की की आयात और अल्लाह के कुरान पर और हदीस पर यकीन करता है तो अल्लाह पाक कैसे उसके लिए मदद उतारते हैं। और दरिया कहते हैं ना, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने। अल्लाह पाक के लिए जब आप काम करते हैं ना तो क्या है, दरिया खुश्क हो जाते हैं। हाँ जी, दरिया खुश्क हो जाते हैं। हाँ जी, और जब अल्लाह के लिए काम करते हैं तो फिर वो खुश दरिया दोबारा चलना शुरू कर देते हैं। आपने तारीख इस्लामी तारीख पढ़ ली, जब अल्लाह के लिए काम करते हैं तो फिर आपको समंदर भी रास्ता देगा, दरिया भी देगा, जानवर जरिंदे चरिंद परिंद ये सारे रास्ता देंगे आपकी मदद के लिए, अल्लाह पाक उतार देंगे, पहाड़ भी रास्ता देंगे। हाँ जी, लेकिन उसके लिए यकीन चाहिए, गैर मुतजलजल यकीन, जिसमें ये अगर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं, अल्लाह मेरा अल्लाह पाक करेगा, क्यों नहीं करेगा, अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है, अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद। इस तरह हमारी जेब में पैसे होते हैं ना, इतना यकीन भी, ये 100 रुपया हूं ना तो मैं कहता हूँ यार 50 रुपये इधर से रक्षे के दे दूंगा, 50 रुपये वापसी पर दे दूंगा, अब मुझे यकीन है कि मुझे मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं कैसे मतलब रक्षे पे जा सकता हूं। अब जब मेरा जेब खाली हो, इस तरह मेरा 100 रुपए मेरी जेब में है, मुझे पुख्ता यकीन है कि मैं वापस जा भी सकता हूं, आ भी सकता हूं, इस तरह मुझे इस बात पर यकीन होना चाहिए कि मेरी जेब में कुछ नहीं है, अल्लाह की जात पर भरोसा है, एतमाद है, यकीन है, ईमान है, एतकाद है, तो इस हवाले से मुझे अल्लाह पाक मुझे मेरी मदद करेगा, और अल्लाह पाक मदद करते हैं फिर। हाँ, लेकिन उसमें गैर मुतजल्जल, ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं गुफ्तार का गाजी हूं अमल का गाजी नहीं हूं। तो ढेर समीन और ढेर नाजरीन, कश्ती एक वसीला है, एक जरिया है, लेकिन कोशिश ये करें कि चरवाहे का यकीन भी पैदा हो जाए, चरवाहे वाला सिर्फ एक आयत पर यकीन पैदा हो जाए तो हमारी ये दुनिया भी बन सकती है, संवर सकती है, खूबसूरत और काबिल रश हो सकती है, और इसके बाद आने वाली जिंदगी भी काबिल रश हो सकती है, और हम हमारे अमल से औरों के लिए जितनी आसानियां बनेंगी, और हमारे अमल से और हमारे यकीन से और लोगों को जो फायदा और फैस पहुंचेगा, मेरे ख्याल में शायद कोई कर सके। तो न कश्ती थी न किनारे न कोई बादबा, न कश्ती थी न किनारे न कोई बादबा, चरवाहे का यकीन ही इसका सामा था।

डियर सामीन और डियर नाजरीन, आप सुन रहे हैं रेडियो अमन FM 88.4 टांक और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त महर। यकीन पर बात कर रहे थे और इसी यकीन ने ही दुनिया, पूरी दुनिया यकीन पे चल रही है। यकीन है तो कारोबार करता है इस उम्मीद के मुझे नफा होगा। मतलब कोई बार्गेन खोलता है तो इस उम्मीद पे कि मुझे नफा होगा। कोई नया बिजनेस शुरू करता है इस उम्मीद पे कि मुझे नफा होगा। कोई कंपनी बनाता है, कंपनी, हाँ जी, कोई इंडस्ट्री लगाता है इस उम्मीद पे कि मुझे नफा होगा। अब इस उम्मीद पे अल्लाह पर तवक्कुल करके जब वो काम का आगाज करता है, यकीन है अल्लाह की जात पर, चाहे कोई भी हो, यकीन जिसका होगा, चाहे वो मुसलमान है या काफिर है, हाँ जी, मुसलमान है या गैर मुसलमान है, जब अल्लाह की जात पर उसका यकीन होगा तो अल्लाह पाक किसी की मेहनत जाया नहीं करते। अल्लाह पाक मेहनत का सिला देते हैं वन वे आर दी अदर, या एक तरीके से या दूसरे, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं अल्लाह पाक की मदद के। उस पर हम बहस अब फिलहाल मैं नहीं करता, बात लंबी हो जाती है। हर बात का इजहार जरूरी नहीं है लफ्ज़ से, और हर बात की वजाहत भी नहीं होती, क्योंकि फिर बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। बस बात यह है, यकीन है। अल्लामा इकबाल ने भी ये बहुत खूबसूरत अंदाज में बात की है कि जब आपका कामिल यकीन होगा तो जैसे चरवाहे को यकीन हुआ, वो साहिब यकीन था, साहिब अमल हो गया, क्योंकि उसे ये हमारी तरह चलाकियां मलाकियां, ये अगर मगर और लेकिन वगैरह, अगर ऐसा हो जाए और अगर ऐसा हो जाए, ये बातें, वो मुखलिस लोग हैं, सच्चे लोग हैं, और सच्चे और मुखलिस लोग जो हैं वो वाकई ही अल्लाह के यहाँ करीब भी होते हैं, और उनसे उनके इलम के मुताबिक सवाल होगा, और जो जितना इलम होगा उसी इलम के मुताबिक ही उससे नस्बत से सवाल होगा। तो यकीन मोहकम, दुनिया में कामयाबी के लिए पहला उसूल ये है कि आप कामिल यकीन रखेंगे, उसमें थोड़ा सा भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होगी। कोई भी आप स्कूल एस्टेब्लिश कर रहे हैं, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, बिजनेस, कम पैसों वाला, ज्यादा पैसों वाला, किसी किस्म का काम शुरू करते हैं, कोई कॉलोनी बना रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, लेकिन कामिल यकीन मोहकम, पहली कामयाबी का राज है कामिल यकीन होना। नंबर टू पे कामिल यकीन होना। दूसरी बात यह है अमले पहम, यकीन के बाद मरहला आता है मेहनत करने का। यकीन आपने बना लिया, हौसला कर लिया, हिम्मत ले ली और आपने इरादा कर लिया, अब इरादा ही तो यकीन है। और दूसरी बात यह कि अमल पहम, आप मुसलसल मेहनत करेंगे, मेहनत के बगैर कोई काम नहीं। आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, और इसी मेहनत के दूसरा जो स्टेप है कामयाबी का वो मेहनत है, लेकिन मेहनत मुसलसल करते रहना, छोड़ना नहीं है, सोना नहीं है, चौंकना नहीं है, ठोकर खानी है, लेकिन उठना है, क्योंकि जो चलते हैं वही तो गिरते हैं, जो गिरते हैं वही तो उठते हैं, जो उठते हैं वही तो संभलते हैं, और जब संभलते हैं तो आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो लोग उनकी एक झलक देखने के लिए सारा दिन इंतजार करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, यकीन मोहकम, अमल पहम, मुसलसल मेहनत, मुसलसल कोशिश, बीच में लेटना नहीं, सोना नहीं, ठीक है जी, और लापरवाही नहीं करनी, सुस्ती नहीं करनी, गफलत नहीं करनी। और तीसरा उसूल कामयाबी का, मोहब्बत फातेह आलम, अपने हैं, पराए हैं, दूर के हैं, करीब के हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, काले हैं, सफेद हैं, मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी हो, अहले इलम हैं, बगैर इलम के हैं, हाँ जी, मर्द है, औरत है, छोटा है, बड़ा है, कुछ भी आप हासिल करना चाहें, करीब करना चाहें, तो उसके लिए तीसरा उसूल कामयाबी का जिंदगी में मोहब्बत फातेह आलम। ये तो चंद लोग हैं, ये तो हजारों लोग हैं, लाखों करोड़ों अरबों तेरे गुलाम बन जाएंगे और तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होंगे, उसके लिए आपकी मोहब्बत फातेह आलम, मोहब्बत फातेह। हर एक से मोहब्बत करना सीखो, एहतराम करना सीखो, हर एक को एहतराम दो, मोहब्बत दो, और उसके इलम के मुताबिक, उसकी दानाई और समझ के मुताबिक उनसे बात करो, उसको एहतराम दो, उसको इज्जत दो, इंशाअल्लाह ताला। ये तीन उसूल हैं जिहाद-ए-ज़िंदगानी में हैं, यही मर्दों की शमशीरें। कहता है कि अगर जिंदगी एक जदोजहद है, एक कोशिश है जदोजहद और मुसलसल जदोजहद है, अगर आप इस जदोजहद में, इस मैदान में, इस जंग में कामयाबी चाहते हैं, तो ये तीन तलवारें, शमशीरें मना, ये तीन तलवारें हैं, मोहब्बत, कहते हैं यकीन मोहकम, अमले पहम, और मोहब्बत फातेह आलम। ये तीन तलवारें हैं इस जिंदगी की जद्दोजहद में आपको कामयाबी से हमकिनार करते हैं, इस जिंदगी की जंग में आपको कामयाबी से हमकिनार करते हैं। शर्त यह है कि आपको कामिल यकीन होगा। तो डियर समीन और डियर नाजरीन, यकीन पर ज़ुर्रुल्लामा इकबाल की बात हमने कर दी, और दूसरी बात यह कि अगर आपको यकीन होगा तो समंदर रास्ते देगा, अगर आपको यकीन होगा तो बारिशें बरस जाएंगी उधर जहां पे आपका दिल चाहेगा, और जब आप मिट्टी को हाथ लगाएंगे वो सोना बनेगी, जब आप पत्थर को हाथ लगाएंगे वो सोना बनेगा।
हाँ जी, आप पौधे को हाथ लगाएंगे तो उस पर खूबसूरत फल उगेंगे प्यारे। हाँ जी, आप फूल को हाथ लगाएंगे तो वो फूल खुशबूदार जरूर होगा। हाँ जी, वो पत्ते हवा भी देने लगेंगे, वो मोहब्बतें भी देंगे, और उन पत्तों खुश पत्तों से आपको फूलों की महक और खुशबू भी आएगी। शर्त क्या है? यकीन मोहकम। जब आपका कामिल यकीन होगा, अमल पहम होगा, और मोहब्बत फातेह आलम, और मोहब्बत फाते कुछ एक और शेर के मैं कुछ अल्फाज में चल रहा हूं, और इखलास होगा। हाँ, इखलास होगा। जब आप के अंदर इखलास होगा तो आपके हर कोई आपके करीब होता जाएगा और आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा और आपके साथ चाहत उसकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन शर्त उसमें क्या है? शर्त यह है कि आप इन तीन उसूलों पर काम करें।

नजीर साहब ने हमें मैसेज किया है, अहमद चक नंबर 143 TDA लैया। अस्सलाम वालेकुम, सदा सलामत रहो, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी, अंग्रेजी में मैसेज किया, एक उर्दू में आया है, बहुत मेहरबानी नजीर साहब। आप हर प्रोग्राम में हमें मैसेज करते, कोई प्रोग्राम आप मिस नहीं करते, मैसेज जरूर करते हैं, हमें सुनते हैं, आपकी चाहतों का मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जी।

अडियर सामीन और डियर नाजरीन, प्रोग्राम आपने सुना और उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लिखा होगा, सुना होगा और अमल की यकीन के साथ इस उम्मीद पे कि अगर इन बातों पर और इन तजावीज़ पर और इन तीन उसूलों पर जो अल्लामा इकबाल के मैंने आपके सामने रखे, इन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जिंदगी पुरसकून, खूबसूरत, प्यारी, पुरश्क होगी। और मजीद मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा यकीन मोहकम, अमल पहम और मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें। फी अमानिल्लाह, हयात बाकी तो मुलाकात बाकी।

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 کا. آپ کا میزبان عارض انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے. امید کرتا ہوں آپ تمام سننے والے خیر وافیت سے ہوں گے, جہاں کہیں بھی ہوں گے صحت والی زندگی گزار رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے, ہنستے رکھے, مسکراتے رکھے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. خواتین و حضرات, یہ پروگرام آپ کی خدمت میں الشفا دواخانہ کی خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. سامعین اکرام, الشفا دواخانہ پر دیسی طب کے ماہر جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب الشفا دواخانہ پر موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک جاری رہتا ہے. اور انشاءاللہ روزانہ کی طرح کل بروز سوموار بھی حکیم مشکور احمد شاہ صاحب جو ہے الشفا دواخانے میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. ایڈریس نوٹ فرما لیجئے, الشفا دواخانہ سوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک. بالکل خواتین و حضرات, جو بہنے میرے بھائی مجھے جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں, ان کو ویلکم. جی آئین پخیر آغلے ست بسم اللہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صحت کے اس سفر میں جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. سو بالکل خواتین و حضرات, روزانہ کی طرح حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں اور روزانہ کی طرح آج بھی ہم ایک ٹاپک پر بات کریں گے, ایک ایسی بیماری کے بارے میں جس میں اکثر لوگ مبتلا ہوتے ہیں, اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ 6:20 کے بعد آپ کی کالز لی جائیں گی 0319-55-23-404 پر آپ کال کریں گے, ایس ایم ایس بھی اسی نمبر پر کریں گے. تو چلتے ہیں جی صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: حکیم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: ٹھیک ٹھاک.
0: طبیعت یہ ٹھیک ہے؟
1: شکر اللہ.
0: کیسا رہا آج کا دن آپ کا؟
1: ایز اٹ بہتر
0: بہتر ہی رہا. چلے ماشاءاللہ, پھر تو بہت اچھی بات ہے. حکیم صاحب, آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کروانے لگا ہوں, آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کل ہم نے شو میں بات کی تھی جوڑوں کے درد کے بارے میں.
1: جی بالکل.
0: تو آپ نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کے اوپر ایک شو کریں گے اور تفصیل اس کے اوپر بات کریں گے.
1: جی بالکل.
0: تو ذرا آپ سامعین کو بتائیے کہ جوڑوں کے درد کی وجوہات کیا ہیں, اس کا علاج بتائیں, اس کی احتیاطی تدابیر بتائیں. تو سامعین کو ذرا جوڑوں کے دردوں کے بارے میں آج بتائیے گا.
1: جی ضرور. ایسا ہے ہم سب کے, زیادہ تر میرے پاس بھی جو پیشنٹ آئے ہیں نا, یہاں بھی میرے پاس دو مسئلے ذرا زیادہ ہی آئے ہیں. ایک تھا بواسیر کا اور ایک ہے جوڑوں کی دردوں کا. اب اس میں یہ ایک عام سا مسئلہ ہو گیا جس میں جوان, بزرگ, عورتیں, بچے تقریباً تمام ہی مبتلا ہو گئے ہیں.
0: ہاں جی.
1: اور خاصا پھیل گیا ہوا ہے نا. تو باقی اگر ہم کہیں کہ جو جوڑوں میں درد ہے یہ بڑھتی عمر کے ساتھ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کی عمر بڑھ رہی ہے تو شاید, لیکن ایسا نہیں ہے. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض افراد کو گھٹنوں میں, کندھوں میں, کمر میں, کلائیوں میں اور اسی طرح ہی ہاتھوں میں, پیروں میں دردیں محسوس ہوتی ہیں.
0: بالکل.
1: اور اسی کی وجہ سے جو ہے اس میں عام وجوہات بھی شامل ہیں. اس میں آ جائے گا کہ جیسے کچھ لوگوں کو تو بالکل ہی ورزش کے قریب ہی نہیں جاتے.
0: بالکل.
1: یہ اور آج کل یہ عام سا ہی مسئلہ ہو گیا کہ ہم ورزش سے کتراتے ہیں. باقی کچھ خوراک. دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسی چوٹ لگ جانا, یہ اس کی عام وجوہات ہیں کہ دردیں ہوتی ہیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرانی کوئی دردیں وہ بازو کا سامنے آ جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے اس چیز کا جب بڑھتا ہے تو ہم فوری طور پر کہتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی ریلیف چاہیے. ہم پین کلر کا سہارا لیتے ہیں.
0: ایسی بات ہے
1: کہ وقتی طور پر یار ہم اپنا کام جاری رکھیں, ہم اپنی باڈی کی طرف اتنا غور نہیں کرتے, حالانکہ وہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یار یہ جو مسئلہ ہے یہ عام نہیں ہے اور اتنا سمپل نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے. تو اس کو آپ پین کلر سے نہ وہ کور کریں.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: اپنے کسی معالج سے مشورہ کریں, اس کو جا کے اپنا چیک اپ کرائیں تاکہ پتا چلے کہ اصل میں اس کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: اسی طرح بعض افراد موٹاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, وزن بڑھ رہا ہوتا ہے, और साथ उनके घुटनों में कंधों में दर्द वगैरह भी महसूस होती है, लेकिन वो दर्द को इतना नहीं करते, वो मोटापे की तरफ के यार ये जो है हमारा यानी सॉरी मोटापे की तरफ गौर नहीं करते कि हम अपने मोटापे को कवर करें, वो दर्दों की तरफ देख रहे होते
0: ऐसी
1: हैं
0: बात है
1: कि हमें बस। मेरे पास भी ऐसा ही होता है, काफी देर से मेरे साथ ऐसे रहा कि पेशेंट अक्सर यही कहता था कि यार आप हमारे जो है ये दर्दों का हल करें,
0: ऐसी बात है
1: वजन हो जाएगा, वजन के वजन को रहने दिया भी तो वजन घटाएंगे तो उसके फिर कवर हो सकेगा वो। वजन का कम होना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए फिर पेशेंट को वजाहत से समझाया जाता है बिठा के। और मैं अक्सर यही कहता हूं कि बजाय इसके कि आप टोटकों पे नुस्खों पे गौर करें, उसकी बजाय आप एक दफा दवाखाने पे विजिट करें।
0: बिल्कुल ऐसी बात,
1: उस पे आके जब आप मालिक से मशवरा करेंगे, आप उसको अपना पूरी बॉडी वो आपकी चेक करेगा, तो फिर वो तशखीस कर सकेगा कि दर्द की नोयत क्या है और असल में इसका इलाज क्या बनता है।
0: ऐसी बात है।
1: तो फिर आप उसमें रोज बा रोज इम्प्रूवमेंट भी महसूस करेंगे कि हाँ मैं बेहतर हो रहा हूँ। लेकिन हम लोग थोड़ा सा बस कन्नी कतरा जाते हैं, हम बस कहते हैं कि यार हम अपने तौर पे कोई इलाज कर लें, मुआलिज के पास जाएंगे तो वो पता नहीं कैसे क्या बना देगा। तो चीज यह है कि थोड़ा सा अपनी बॉडी की तरफ गौर करना और उस वजह को तलाश करना कि जो वजह बन रही है, तो इंशाल्लाह दो जोड़ों का दर्द जो है वो काबिले इलाज है, ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। और इसी तरह के बाज दफा वजूद में यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है, हम लोगों में अक्सरियत ऐसे है जो अपने टेस्ट ही नहीं करवाते।
0: ऐसी बात है,
1: हालांकि देखा जाए तो तकरीबन हर कम से कम 6 महीने बाद आप अपने टेस्ट तो करा लें, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा लें, अपना यूरिक एसिड चेक करा लें, आपको पता चले कि मेरी बॉडी में क्या चेंज हो रहा है। अगर मुझे दर्दें महसूस होना शुरू हुई हैं तो ये इंडिकेट तो नहीं है किसी और मर्ज के बारे में। तो उस लिहाज से जब आप जाके मुआलिज से मिलेंगे, उससे मशवरा करेंगे, वो आपको फिर उस तरफ रहनुमाई देगा कि यार अगर ये वजह है तो आप अपने टेस्ट करा लें।
0: ऐसी बात,
1: तो जो चीज सामने आती है उस चीज पे काम होता है और इंशाल्लाह दर्द से निजात भी मिल जाती है। और इसी तरह ही वजन है तो वजन को भी कम करना है, यूरिक एसिड है तो यूरिक एसिड को घटाना है, और साथ उसके उसको यानी थोड़ा सा उसकी एक्टिविटीज भी तब्दील करानी कि यार ये वर्जिश आपने जारी रखनी है। बाज दफा कुछ ऐसा होता है कि पुरानी बीमारियां होती हैं।
0: बिल्कुल ऐसी बात है,
1: ठीक है। अब वो भी वजूद को कमजोर कर रही होती हैं, आदमी उस बीमारियों की तरफ गौर करने के बजाय दर्द को देख रहा होता है कि मेरी दर्द है, बस ये दर्द मुझे सुकून दे, मैं अपने काम जारी रखूं। तो जब वो मुआलिज से मिलेगा और जब उसकी केस हिस्ट्री सामने आएगी तो फिर पता चलेगा कि असल में इसको पहले क्या तकलीफ थी और किन वजूहात की बिना पे जो दर्द है वो दोबारा हो रही है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें मुआलिज से मिलना जरूरी हो जाता है, लेकिन कोई भी दर्द है आप उसको मामूली ना समझें।
0: हाँ बिल्कुल ऐसी बात,
1: आप अपने ताई जरूर इस्तेमाल करें चीज, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के और किसी मुआलिज से मशवरा भी जरूर कर लें।
0: ऐसी बात है,
1: देसी दवाखाने में यह है कि कुछ लोग डरते हैं कि यार जाएंगे दवाखानों में तो ये बहुत महंगा, ये ऐसा नहीं होता।
0: बिल्कुल ऐसी बात,
1: और ना ही ऐसा कि उसको जबरदस्ती कोई दवाई दी जाए या कायल किया जाए, लेकिन उसको मशवरा दिया जा सकता है। मेरे पास अक्सर ऐसा होता है, बाज लोग आते हैं दिन में तो मशवरा करके चले जाते हैं कि यार आप हकीम साहब हमें ये मसला है इसका कोई हल बता दें। तो लाजमी नहीं होता कि हम उसे फोर्स करें कि नहीं आप दवाई ही लो, हम उसे उस चीज की यकीन दहानी कराते हैं कि यार ये मसला था, इसकी ये शुरुआत है और इसका ये हल है, अब आप अपने देख लें, जब आप इसको ठीक करना चाहें या इसकी तरफ तवज्जो करना चाहें तो आप दवाखाने पे आ सकते हैं।
0: बिल्कुल ऐसी बात है,
1: तो बाकी अपनी थोड़ी सी खुराक को मुतवाजन रखना जरूरी है। हम लोग आदि हो गए हैं फास्ट फूड के,
0: ऐसी बात,
1: ठीक है। अब वो चीजें जो है वो जाहिर बात है वो भी अपने असरात तो दिखाएंगी, तो इस लिहाज से ये कहना भी जरूरी है कि आप अपनी खुराक की तरफ अपनी रूटीन की जो एक्टिविटीज है उसकी तरफ भी गौर करना कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज करूं, ये नहीं कि आप जिम ज्वाइन कर लें या लंबी वॉक कर लें, हल्का फुल्का सा आप वॉक करें, हल्की वर्जिश करें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उससे आप काफी हद तक कवर कर सकते हैं अपने दर्द को। और जहां तक है इस्तेमाल का, बेशुमार कुदरत ने जड़ी बूटियां दी हैं कि जिनसे आप इस्तेफादा भी ले सकते हैं, और वो दवाइयों की कह लें कि जुज़े खास भी हैं जो कि तिब में पड़ती हैं, उसमें कई अज़ा हैं, उसमें असगंध है, उसमें हल्दी है, ये बेशुमार चीजें हैं, सुंबल है, दारचीनी है, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपके जाके जोड़ों के दर्दों को, चाहे वो दर्द किसी भी किस्म का है, कमर का है, कंधे का है, गर्दन का है, इवन के आपकी असाबी कमजोरी है, आपके पट्ठे जो हैं वो कमजोर हैं, ये उनको एक सपोर्ट देते हैं, एक कवर करते हैं उनको, तो फिर आपके दर्दों में भी काफी हद तक जो है वो कमी हो जाती है। और फिर खुराक आप कोशिश करें कि गोश्त को आप कम से कम इस्तेमाल करें,
0: ऐसी बात
1: ठीक है, बाकी सब्जियों को, दालों को, इनको अपनी खुराक में जगह दें, उससे ये होगा कि आपके जो असाब हैं वो बेहतर होंगे, आपका मैदा बेहतर होगा, आपके जो गैस ट्रबल और ये चीजें हैं वो उससे फर्क डाल देंगे, और इसका ही फिर आपका हल होगा कि आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा, नहीं बढ़ेगा, आपका स्टॉमिक, आपका मैदा भी ठीक काम करेगा, और आपको दर्दें वगैरह भी नहीं होंगी। और तीसरा कि आप अपनी खुराक में अदरक का इस्तेमाल बढ़ाएं अपने खानों में,
0: चाहे आप जो घरेलू बनते हैं,
1: बिल्कुल घरेलू बनते हैं, और मैं तो बाजू कईयों पेशेंट्स पे मैंने इसका बजाते खुद जाती तौर पर तजर्बा भी किया है कि अक्सर जो जोड़ों के दर्दों के मरीज हैं मैंने इन्हें यही कहा कि आप अदरक का मुरब्बा इस्तेमाल कर लें।
0: अदरक का मुरब्बा
1: वो बेहतरीन चीज है। एक तो तमाम वजूद से जो री हवा बादी हमारे वजूद में बनती है, क्योंकि हमारी खुराकें ऐसी हैं,
0: ऐसी बात है,
1: तो उसको उसने निकाल देना होता है वजूद से, और वजूद में एक तवानाई देनी है ताकि दर्द महसूस ना हो, बल्कि दर्द हो ही ना। दूसरी बात यह कि हमारी खुराक सही हजम हो, और जो हमारे वजूद में खिंचाओ, तनाव सा पट्ठों में खिंचाओ, काफी हद तक वो इस पे हावी हो जाती है। अदरक का मुरब्बा बहुत जबरदस्त चीज है, ये तो सदियों से इस्तेमाल भी हो रहा है सूंड की शक्ल में, कि खुशक अदरक लें आप, उसको आप पीस के रखें, और अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज बनती है जिसे आप कहते हैं कि यार ये थोड़ी सी बादी है, जैसे गोभी है, आलू है, मटर है, गोश्त है, तो उसमें फिर आप वो सूंड को जो है बतौर मिसाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने में। उससे ये होगा कि आपका खाया जो पीना है वो बेहतरीन तरीके से हजम होगा, आपका निजामे हजम जो है वो बेहतर होगा, और गैस और री और हवा ये नहीं बनेगी तो आपको दर्दें भी नहीं होंगी,
0: ऐसी बात,
1: और आपका वजूद एक एक्टिव रहेगा। और अपनी एक्सरसाइज आप हल्के फुल्के रखें, लेकिन रखें जरूर। तो बाकी जहां तक बेहतर है कि अपने मुआलिज से मिलना,
0: ये तो लाजमी,
1: वो बहुत जरूरी है। आप चाहे हल्का सा भी अगर महसूस करते हैं तो आप उसमें लाजमी अपने मुआलिज से मिल लें,
0: बिल्कुल ऐसी बात।
1: और खासकर कि जब आपका दर्द शदीद हो, आपके जोड़ों में सूजन हो और अचानक दर्द शुरू हो जाए या बढ़ने लगे,
0: ठीक
1: तो
0: है,
1: फिर उसमें सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि बजाय हम कोई पेन किलर इंजेक्शन, कोई पेन किलर गोली, उससे बेहतर है कि हम अपने मुआलिज से फौरी मशवरा करें। अगर वो जरूरी समझता है तो हो सकता है वो आपके कोई टेस्ट भी करवा ले,
0: ठीक है,
1: ठीक है, लेकिन एक क्लियर मर्ज सामने आ जाएगा। जब मर्ज सामने आएगा तो उसका इलाज भी करना आसान हो जाएगा। तो अब यही सिर्फ समझाना मकसूद होता है कि आप इसको मामूली ना समझे, ठीक है,
0: ठीक है।
1: और जब भी ऐसी कोई, अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसी चीजें नजर आती है तो आप कोशिश करें कि अपने मुआलिज से राबता जरूर करें और उससे मिलें। और इसका देखा जाए ना तो अगर जोड़ों का है या कंधे का है या कमर का है या दर्द इवन बॉडी में है
0: ऐसी बात,
1: तो उसका सबसे बेहतरीन हल ही यही है कि उसका हल जब ही निकलेगा जब वो मुआलिज के पास जाए।
0: बिल्कुल ऐसी
1: बात। अपने तरीके से वो नहीं समझ सकेगा कि मुझे ये दर्द क्या है कैसा है, और वक्ती तौर पे अगर वो कोई चीज मेडिसन या खुराक लेगा भी तो थोड़ी देर के लिए तो सुकून आ सकता है, लेकिन प्रॉपर उसमें नहीं
0: सुकून नहीं होगा
1: और वो फिर बेचैन सा रहेगा। फिर मुआलिज जो है वो उसको बताएगा कि आपकी खुराक क्या है, आपके रूटीन का शेड्यूल जो है वो क्या होगा, उससे फिर उसकी बॉडी पे असर भी पड़ेगा। बाकी इंशाल्लाह ताला उससे हर्बल मेडिसिन में कुदरत ने इतनी शिफात रखी है,
0: बिल्कुल ऐसी
1: कि जब आप उसे इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप बजाय किसी साइड इफेक्ट के आप बेहतरीन रिजल्ट ले लेते हैं और अपने मर्ज को काफी हद तक कवर कर लेते हैं।
0: बिल्कुल ऐसी बात है।
1: बाकी सेहतमंद जोड़ तो बेहतर जिंदगी, ये तो एक मकूला चला भी है और बेहतर है, लेकिन दर्द को नजरअंदाज ना करें बल्कि इसकी जो असल वजह है वो जाने और सही रहनुमाई हासिल करें, मुआलिज से मिलें और फिर उसके बाद डिसाइड करें कि हाँ अब मेरे लिए जो है वो क्या बेहतर है। तो इंशाल्लाह कभी भी आपके वजूद में तकलीफ ज्यादा देर तक रहेगी नहीं,
0: ऐसी बात,
1: और आप उस पर कंट्रोल कर लेंगे। बाकी जहां तक नुस्खों का या टोटकों का ताल्लुक है वो बेशुमार चीजें हैं, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पंसारी से सुंबल मिल जाती है,
0: सुंबल
1: की लकड़ी ले लें, इसको आप इसका बुरादा ले लें, यानी इसका रेती के साथ इसका बुरा निकाल लिया, वो आप एक कप गरम दूध के साथ आप चाय का जो छोटा चमचा है ये सुबह शाम आप दो टाइम ले सकते हैं
0: है।
1: तो आपके वजूद में काफी हद तक दर्दें खत्म हो जाएंगी। फिर इसके अलावा अश्वगंध है, मोचर्स गोंद है, ये भी काफी ज्यादा बेहतर साबित हुई है दर्दों में। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप समझते हैं कि बेहतर तरीके से इसको जान सकें या इसके बारे में अगर आप खुल के कोई उसके ज्यादा तफसील में, तो फिर यह है कि आप शवाल मार्केट दवाखाने पे आ सकते हैं,
0: शिफा
1: दवाखाने पे। मैं हर रोज सुबह 9 बजे से लेके
0: 8-9 बजे से
1: तकरीबन वो टाइम हो जाता है क्योंकि डिस्पेंसर पहुंचते तो यह है कि आप शाम 4 बजे तक मुझसे बिला नागा आप मिल सकते हैं, और जो मेरे से मैं समझूंगा इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर रहनुमाई दे सकूं। बाकी जहां तक दवाई का ताल्लुक है कोशिश होगी कि बेहतर से बेहतर अद्वियात और बेहतर से बेहतर इलाज हो सके।
0: बिल्कुल ऐसी बात है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया कि इन सब आपका। तो बिल्कुल खवातीन हजरात, आप लोगों ने सुना हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब ने जोड़ों के दर्दों में मजीदी तफसील के साथ बात की, और उम्मीद है कि आप सबको समझ भी आया होगा। बिल्कुल सही खवातीन हजरात, हकीम साहब द जोड़ो दर्दो बने डीरा पर तफसील सरा खबर वखड़ा, उम्मीद लरम चिस्तासो बहम पदी खबरें बने पोशवी हो, अब कुस्तासो हम द दर्दो मसाइल भी इस्तासो कोर की चेरे मशरवी अगुदा मसले भी अगे दफा रस्तासो तशरीफ रावड़ी। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस ट्रैफिक चौक टांग सिटी। मजीद तफसीलात मालूमात दफारा नंबर दरसरा नोट कही 0319-55-23-404। बिल्कुल उम्मीद करना जनाब तुआकुई अज हकीम से बने जोड़ों के दर्दों से बड़ी तफसीली गाल की थी। अगर तुम्हारे भी कोई इस किस्म का जोड़ों के दर्दों का मसला है पिया तो तुसा हकीम साहब के को इलाज करवाना चाहते वे, क्योंकि जी जो जोड़ा के दर्द हैं इस दा इलाज करावन बहुत बेहद जरूरी है ताकि तुहाडे मसले वधे नहीं। तो इस दे बारे जी हकीम साहब नाल गल करे सो मजीद तुसा सारे कॉल कर सकते वे 0319-55-23-404 दो ते। अस्सलाम वालेकुम जी रेडियो को साथ बंद कर लें जी, चेरे सवाल मुझसे सेहत हवाले सरा जी वो आयो और सास आवाज हम डी रिजा था कटकी की लग गया था। बिल्कुल जनाब दा नंबर दरसर नोट की 0319-55-23-404 और 0963-511-1100 488 بندے ہم ساتھ مالا کال کے بولے سو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو کھولو کم سے نبرو
2: حکیم صاحب کیا حال ہے؟
0: اللہ کا شکر ہے جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں
2: الحمدللہ.
0: جی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟ میں تو تھوڑا اکثر خراب راند ہے. حکیم صاحب گال کر گئے. حکیم صاحب بات کریں ذرا.
1: جی جی
0: ٹھیک ہے
1: جی. صحیح ہو گیا. دراصل تے پنجابی سمجھتے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. بہرحال آپ کے میدے میں تیزابیت ہے زیادہ اور گرمی خشکی کا غلبہ ہے تو اس وجہ سے آپ کے منہ کا ذائقہ بھی خراب ہے. اگر میدے میں گرمی ہے آپ کی اس کی وجہ سے آپ کے منہ کا ذائقہ بھی خراب ہوگا. کبھی کبھی دل بھی متلی کرے گا اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے اعصاب پہ بھی اثر آئے گا کہ آپ کی تھکاوٹ سانس کا پھولنا. جی تو یہ چیزیں پھر ظاہر ہوتی ہیں اس لحاظ سے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹانک سے. تو پھر ایسا ہے کہ آپ تو مجھے صبح بڑے آرام سے مل سکتے ہیں. یہ شوال مارکیٹ آپ صبح آ سکتے ہیں. میں تقریباً 8-9 بجے کلینک پر موجود ہوتا ہوں شام 4 بجے تک. تو اس دوران یہ ہے کہ آپ جب آئیں گے تو میں آپ کی نبضیں بھی دونوں بازوؤں کی دیکھوں گا اور آپ کو اس سے بہتر بھی رہنمائی دے سکوں گا. بہت مہربانی اور بہت شکریہ جی. صبح میں تقریباً 8 بجے آ جاتا ہوں لیکن سیٹ پہ بیٹھتے بیٹھتے 9 بجے پیشنٹ میرے پاس آنا شروع ہوتے ہیں. تو 9 سے شام 4 بجے تک پھر آپ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں. بہت مہربانی جی.
0: اللہ حافظ. بہت مہربانی. بالکل جناب آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسٹوڈیو سے بالکل لائیو اور براہ راست الشفا دواخانہ کے یہ پیارا سے شو سماعت فرما رہے ہیں. سو بالکل خواتین و حضرات اگر آپ کا بھی کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں. ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی ورور سو کو لکم جی نرس رہے ہو.
3: میں عصمت امان بات کر رہا ہوں گاؤں کوڑو خان سے.
0: جی
3: حکیم صاحب کو سلام اور آپ کو بھی.
0: وعلیکم السلام.
3: اچھا بھائی جان عرض یہ ہے حکیم صاحب سے کہ 20 سال کا بچہ ہے یا نوجوان کہہ دیں تو اس کو یرکان ہوا ہے. ابھی اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے تقریباً 15-20 دن ہو گئے.
0: ٹھیک ہے.
3: لیکن اس کی جو کمزوری ہے اور رنگ زرد ہے اور خواب کے اور اس کے بارے میں حکیم صاحب اگر تھوڑی سی بات کر دیں تو یہ پھٹکنی جو ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہوتا ہے یرکان کے لیے؟ شکریہ.
1: دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پھٹکنی جب استعمال ہوتی ہے تو یہ کچی حالت میں استعمال نہیں ہوتی. اس کو ہمیشہ توے پہ پھول کیا جاتا ہے یعنی اس کے اندر جو لیکوڈ ہے اس کو خشک کیا جاتا ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: اور اس کے بعد آپ اسے پاؤڈر بنا کے رکھ سکتے ہیں اور پھر اس کی مقدار آپ مکھن یا ملائی اس میں لے سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچے کو پی لیا ہے تو پھر اس کا بہترین علاج ہے اور اگر اس کی رپورٹس آپ نے کرائی ہیں اب اس میں ڈائگنوز ہوا ہے اے ہے بی ہے تو پھر بھی اس کا علاج ہے. آپ اگر تھوڑی سی زحمت کریں تو اس بچے کی جو رپورٹس ہیں اگر بچہ ساتھ ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے ورنہ آپ اس کی رپورٹس لے کے تو اگر مجھے ذاتی طور پر دواخانے پہ مل لیتے ہیں شوال مارکیٹ الشفا دواخانے پہ تو میں آپ کو

0: तशखीस करता है तो फिर आपको पता चलता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है या मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या मुझे शुगर है और वो किस स्टेज पे है।
1: तो
0: बाकी जहां तक है, शुगर हमारे वजूद से ही पैदा होती है, इंसुलिन अंदर से ही हमारा बनती है, पेंक्रियास है, लबलबा है, वो इंसुलिन पैदा करता है। लेकिन बाद हालतों में जब इंसुलिन ज्यादा बनना शुरू हो जाती है तो वो फिर अपनी मकदार से बढ़ती है।
1: ऐसी बात है।
0: दूसरा ये होता है कि वो अगर एक बना रहा है नॉर्मल रेंज पे, लेकिन हम आर्टिफिशियल तरीके से उसको और ज्यादा इंसुलिन मुहैया करते हैं, यानी बाहर से ऐसी चीजें जिनमें मिठास बहुत ज्यादा है, तो वो फिर जाके हमारे लिए मसला बनाती है। और यानी कड़वी चीजों से हम थोड़ा सा वैसे ही अवॉइड करने लगे।
1: बिल्कुल ऐसी बात,
0: मीठा बहुत शौक से खाते हैं, तो ये चीजें जो हैं निशास्ते से भरी, खासकर बेकरी आइटम, तो ये उसको फिर बढ़ा देती हैं।
1: ठीक है,
0: कोशिश करें कि सबसे पहले अपना टेस्ट जरूर करवाएं ताकि पता चले यूरिन में है, ब्लड में है, और फिर उसके मुताबिक ही उसका इलाज हो। बाकी जहां तक आ गया इसके सिम्टम्स का अगर देखें तो उसमें दो दो किस्म की आ जाती हैं।
1: ठीक है,
0: कुछ लोगों को प्यास बहुत ज्यादा लगती है, कुछ को बिल्कुल प्यास नहीं लगती, कुछ को जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ के जख्म ठीक नहीं होते। ठीक है, अब इसमें देखना यही होता है कि मरीज की हालत, मरीज का जो बॉडी स्टेमिना है, उसकी उम्र क्या है, उसके मुताबिक फिर उसके टेस्ट करके और फिर उसकी दवाई तैयार की जाती है। बाकी इसके लिए ये जरूर है कि आप बेकरी आइटम से थोड़ा सा परहेज करें, लेकिन हफ्ते में कम से कम एक दो मरतबा कोई कड़वी सब्जी जैसे करेला है या वो चुंगे आती हैं, तो ऐसी चीज पकाएं जिससे उनके जो मिठास है उसको थोड़ा कड़वाहट में तब्दील करें।
1: ठीक है,
0: इसी तरह ही बाज लोग जामुन की गुठलियां हैं, इनको आप धो के और खुशक कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको पिसवा लें और आधा आधा चमचा, या फिर बाज दफा जब हम करेले छीलते हैं तो जो इसके ऊपर का छिलका है दानेदार, इसको आप किसी मलमल के दुपट्टे में निकाल के निचोड़ लें, और एक टीस्पून आप किसी भी टाइम दिन में रोज पी लिया करें, तो ये भी आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा भी बेशुमार चीजें हैं जिनसे आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं।
1: ठीक है,
0: लेकिन फिर बात वही है कि आप अपने तरीके से तो टोटके नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक मर्तबा मुआलिज से भी मिल लें और उसके मुताबिक फिर आप इस्तेमाल करें, तो जो शुगर की वजह से आपकी कमजोरियां हैं वो भी दूर होंगी, आपका जिस्म ताकतवर होगा, आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहेगी,
1: बिल्कुल
0: बढ़ेगी नहीं इंशाल्लाह। वो मुआलिज ही आपके लिए तजवीज करेगा कि आपको क्या चीज की जरूरत है और कितनी मिकदार में चाहिए। देसी दवाई में भी ऐसा है कि आप इसे, ये नहीं है कि एक हाजम है तो हम उसे कहें कि चमचे भर भर के खाएं, ऐसा नहीं है, उसकी भी एक डोज है, एक मिकदार के मुताबिक जब आप चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला देसी दवाई भी आपको बेहतर कर देगी।
1: चलें, ठीक है हकीम साहब, ये बताइएगा कि अगर शुगर का इलाज पर वक्त ना कराया जाए
0: जी,
1: तो इससे मजीद और क्या मसले बन सकते हैं?
0: इससे आपका जो है दिल भी कमजोर हो सकता है, दूसरा ये है कि आपकी आई साइड है, आप यानी आपकी जो कुव्वत समात है,
1: ठीक है,
0: नजर है, आपकी बॉडी है, आपकी असाबी कमजोरी है, और यानी आप ये समझ लें कि जिस तरह किसी दरख्त को धीमक लग जाए और वो अंदर से अंदर दरख्त को खाती रहे और बाहर से वो एक तनावा दरख्त ही नजर आ रहा है, लेकिन इसी तरह इंसान की बॉडी है कि इसको ये अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, इसीलिए बहुत देर बाद इसका पता चलता है जब तक आदमी महसूस ना करे।
1: अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा कि अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभार ना बंदा, आपने जैसे बात की है कि इसका जो जख्म होता है शुगर वाले बंदे का, वो जल्द ठीक नहीं होता,
0: नहीं होता बिल्कुल,
1: यानी कि वो खराब हो जाता है, तो हमने अक्सर देखा है जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं वो अपने हाथ की उंगली, यानी कि मेरी छोटी उंगली पे जख्म हो गया हाथ की, तो वो कटवा देते हैं
0: जी।
1: तो अलशिफा दवाखाना पर कोई ऐसा पेस्ट हो आपके पास, कोई ऐसा जड़ी बूटियों से बनी कोई दवाई हो जो उस जख्म पर लगे और वो उंगली कटवाने की नौबत ना आए?
0: देखिये, उंगली कटवाने की नौबत नहीं आती जब तक आपका शुगर लेवल

ग्रेटेस्ट मिचुलन सीरीज के द्वयम टेस्ट के इंग्लैंड पाकिस्तान ता दमेज गटलो दपारा द्रेसवा अतनवी रंजुनो हदब वरकड़े लॉर्ड्स के लुबिदुन के मैच द्रेम ओवरस बांधे इंग्लैंड पल द्वयम नमकमल इनिंग आगाज योसल ओवरवी रंजुनो सरा कड़े हो दे नपस द इंग्लैंड पूरा टीम द्वसवा अत रंजुनो बांधे आउट शेवे दे इंग्लैंड लतरा पर डेन लॉर्ड्स सलोर पंजोस और हिरी ब्रोक सलोर देश रंजुना जुड़कड़ी दे वो शरीकों द मौसम हाल मौसमियातो मुख्कमे तरमखा 13 घंटों के करक बनू लकीमरवत और टांग ख्वाशासिमों के मौसम खुशको मौसमियातो मुख्कमे तरमखा 13 घंटों के लकीमरवत और टांग ख्वाशासिमों के ज्यात न ज्यात दर्जे हरारत अत दर्श और कम न कम 23 दर्जे सेंटीग्रेड रिकट कड़े शवे पहावा के दनमय तनसुब द्रेसलवेश फीसद अवध्यावार अतर अत किलोमीटर फी घंटा रिकट कड़े शवे दे वाले बलखा सबाबा करक बनू लकीमरवत और टांग के मर सभा शहर उल्लस मिनटकम शपक बजे से रवही औ महाम उल्लस मिनटकम ओ बजे बाद डूबेगी दाऊ द रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क मुहिम खबरुना नोरा मुहिम खबरुन और दलोदा पारा रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क सराव से उस माता द न्यूज टीम सरा राके इजाजत दलोई अल्लाह पामान।

जो मलाई प्रशांत डॉक्टर आने लिखले हो कलमा आयले से मानसल अगामे हर ओ महाम मलश करो इंशाल्लाह अल्लाह तला अगाम मलाशला देर ज्यादा शिफा रखा जमा कजन मखदे बियत खराब तो अगा देर ज्यादा मनसबा लक्रीम ना मुतमयन अदा इतवार पर जमंग वदद गए होल के जब सिंग करते रिस्ताशम ईश मबिटिक्रीम ये जान लराडल पबारा दिन 10 दिन के दिला खिस्ता निजर्ट वर करो

वकास कॉस्मेटिक स्टोर पंदू जमजम मार्केट, वकास कॉस्मेटिक स्टोर पंदू जमजम मार्केट की दुकान दे तमाम प्रोडक्ट को मिलाएगी और अवेलेबल है। खालिद से मंगल मेला खैबर प्लाजा दुकान प्रचार के तमाम प्रोडक्ट मिलाएगी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जमील खान लंडीवा बिल्कुल ओके थे। जमील खान लंडीवा लंडीवा के जमील भाई सरद इशमा तमाम प्रोडक्ट मिलाउशी जी शाहिदो भाई माता सुता कपून याद करू मंग स्तासो प्रोडक्ट्स यूज कहू प्रोग्राम होम आउरू मुबारक शाह प्रोग्राम और

मासी जी जी खुशबू से नाराज है मेरी जिंदगी, खुशबू से नाराज है मेरी जिंदगी, मोहब्बत की मुख्ताज है मेरी जिंदगी। हंस लेता हूँ लोगों के हंसाने के लिए, वरना दर्द की किताब है मेरी जिंदगी। आई एम फौजिया खान फ्रॉम टांको के गम शेर दरा ले गए जमाखोर बहरहाल डेर मनना डेर शुक्रिया प्रोग्राम था द मैसेज के उलू प्रोग्राम तो दरा मैसेज सलाम खादिम भाई संग है डेर इंतजार नबाद में खुदे अरमान पूरा को अवस्था आवाज में और दस्ता प्रोग्राम डेर पमीना और चिर पवरक हुए द टैंक कौन दो तमें सलाम आई महक फ्रॉम डबरा डबरे नमूंग मैसेज कर टांग के इलाका देखा द डबरे नमूंग मैसेज कर दे महक बहरहाल डेर मन जमा खोर बस कल कल मसरूफिया थी इंसान लोग रुक रुक सी खुद ब्याम पर रिडार राजम चतन्ना साफ बरा पैदा की गम ब्याह पैदा शो में कामयाब बेमा डूबे जुंधुन तजुर्बा में नवा अगले अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो शो सुपर डुपर नाइस भाई बहुत खुश हो गई आपके आने से भाई सब कर टैंक लिस्नर को सलाम आई फौजिया खान फ्रॉम टैंक ओके जी तशक्कुर शुक्रिया मेहरबानी और इनको टाइम रहा सिर्फ मुकम्मल तो बंदे खत्म दे वक्त वस में दुम रिश्ते चीज सुमेल मस्तिया मोदा को दस्तूर दे चे शाहान जी मलंगानोला नो टाइम रहा सर पर मुकम्मल तो बांधे खत्म दे वक्त रल नूर इजाजत न रखे और इजुन को अहदा सिकार दे छे राजू का चिकल इजुन ही राजू का खबर माइंड कवे तासुमा जमा पास खबर बांधे खपा की गए तासुमा सही था मेहनत कवे टाइम छे कमरा गले तासु यकीन के मुल्क के डेरा घाटा महंगाई दा इंतहाई महंगाई रा रवान दा हालात दासी तरफ तरवान दी छे डेर सुया स्ट्रगल डेर मेहनत पे कवर वाड़ी जान लगे लाइफ सेट को लुदा पारा अमुन तो डेर मेहनत जरूरत थे तो कोशिश पकड़े कि मेहनत को और खुद मशुमान या मुस्तकबिल खो और मुस्तकबिल उठा को मशवरे और को यो सही से मत तरफ ते रवान को ठीक था कहते कि कमरातुन की जून डेर जात मसरूफ पर डेर जात तकार डेर जात स्ट्रगल जिंदगी रा रवान था और हालात बेहद तय सार रापा से पेट्रोल ये बला पैसों ग्रान कड़ी और चिकल बे अरदानी नु बे सड़ो रूपये अरदान की हाल तक रवान देखा फिलहाल नो अल्लाह दे ससु पर जिंदगो की ससु पर जून की तासु ले सुकून दे की राहत तासु पर जून की पैदा की दमा तासु तो दुआई तासु व मा तो दुआ कवे दमा तासु द माइक तर मंजर रिश्ता दा द रेडियो रिश्ता दे जमा आवाज तासु तर समा तो पूरे दे माइक दे दी पैनल दे दी चैनल ने दर रसी और यकीन का फरस का नेम चरते लाड़ा मैं ब्या बचे मड़ूंगी माँ और तासु चरत सोच कर चरत पजेम के या पख्याल के बामरा जम और दगा दुनिया दा करे जी मुंग जू कहना गुरु पे स्कूल के मुंसरे यो मरगरी पे कॉलेज की बोली पे यूनिवर्सिटी की नूरी पे जब यो इदारा की नूर मरगरी पे बोली इदारा की नूर मरगरी मुंग जी सोरा मख जू मुंग जून ने सख खलक ले रे की नूर खलक को सरे यो देखी दाद जिंदगी फलसफा दाद दा जिंदगी उसूल ली दा जिंदगी दा सिरवाना ठीक था सो शेरों ने बदलते हैं मोरी जिन को सो शेरों ने सरबरा ले जाए जत रखा है और यो संदर दाखरे के बाद अगा बजे प्ले को मगा बावरे सो शेरों ने दिए जून सहरा तमे द मिने बाड़ी वरा उड़े द जून सहरा तमे द मिने बाड़ी वरा उड़े मद एहसास द गुल पल्ला पके लंबारा उड़े और जब द मैं जले दराजान बगैर न पाया ما کل کل د جانان کلی ته شپه راوړې او د لیونتوب د جنګ په زغره کې مې نغښتي ایمان ما د سحر مانځله ځان سره نیزه راوړې او دغه سړی محفل د محفل رنګ ګوري او اوروي څه دغه سړی د محفل رنګ ګوري او اوروي څه هم یې غزل راوړې هم یې قصیده راوړې او د انتظار د هل غرمو وخلې صابر د خپل ارمان د ونې سوري له دمه راوړې او زما د بټګرامو د کرک زما د بټګرامو د کرک د غرونو د خایس له غمه هر سوداګر د کرش مشین او فولادي سپینه اره راوړي چې چرته اوسه خا د باد بریالي سې شپم په خیر سحر مو روخانه د لوی لا پامان.